0: धर्म या संज्ञेत पात्र अशा संस्था आणि मानवी प्रवृत्ती आढळून येतात. त्या सर्व धर्माची व्यापक, समर्पक, सर्वसंमत व्याख्या करणं कठीण आहे. खरं पाहिलं तर धर्माची कोणतीही व्याख्या अपुरीच पडते. धर्म म्हणजे रिलिजन हा जगातील सर्व धर्माचा केवळ समिष्टी बोधक अस्पष्ट अर्थाचा शब्द आहे. म्हणून ज्याचा जो धर्म त्याप्रमाणे त्यानं त्याचं पालन करावं, हा धर्म श्रेष्ठ तो कनिष्ठ असा निष्कारण वाद घालण्यात काय बरं अर्थ आहे.
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM. ऑलवेज हार्ट टचिंग.
2: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, हम पूरी जिंदगी बस दो ही शब्दों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मैं और मेरा. मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी कामयाबी, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा ओहदा. हम इन चीज़ों को इतनी मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं कि भूल जाते हैं कि हम खाली हाथ आए थे. अक्सर हमें लगता है कि जो कुछ हमने कमाया है उस पर हमारा पूरा हक है. लेकिन कबीर साहब आज उस हक की दीवार को एक ही झटके में गिरा देते हैं. वे एक ऐसा हिसाब पेश कर रहे हैं जिसमें घाटा होने के बाद भी इंसान को सबसे बड़ी जीत महसूस होती है. आज का दोहा उस बोझ को उतार देने के बारे में है जिसे हम बरसों से ढो रहे हैं. आइए जानते हैं सब कुछ सौंप देने का आनंद क्या होता है. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं,

राम। यह दोहा कबीर साहब के समर्पण का शिखर है। यह उस मैं की पूरी तरह मिट जाने की घोषणा है जिसके बारे में हम पिछले कई एपिसोड से बात कर रहे हैं। जब इंसान मेरा मेरा कहना छोड़ देता है तब उसे जो मुक्ति मिलती है वो इस दोहे में है। श्रोताओं, कबीर साहब कितनी सरलता से कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं। वे अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यह सांसें, यह विचार, यह जीवन, यह सब तो उस मालिक की दी हुई अमानत है। फिर वे आगे कहते हैं, तेरा तुझको सौंपता। जब मुझे यह समझ आ गया कि यह सब मेरा है ही नहीं, तो मैंने इसे उसके असली मालिक को वापस कर दिया। क्या लागे है मेरा, जब सामान मेरा था ही नहीं तो उसे सौंपने में मुझे दुख कैसा, और मेरा गया ही क्या। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि जैसे हम किसी बैंक के लॉकर में अपना कीमती सामान रखते हैं, बैंक उसे संभाल कर रखता है, पर बैंक मैनेजर कभी यह नहीं कहता कि वह सोना उसका है। हम भी इस दुनिया में उस परमात्मा के मैनेजर मात्र हैं। दुख तब शुरू होता है जब हम उस अमानत को अपनी समझने लगते हैं और कहते हैं, कबीर कहते हैं कि जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि सब कुछ उसका है, वैसे ही आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। फिर ना कुछ खोने का डर रहता है, ना कुछ पाने का लालच। आज का चिंतन, दोस्तों, आज जरा अपने हाथों को खोल कर देखिए, हमने क्या क्या पकड़ रखा है। कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम अपना मान कर परेशान हो रहे हैं? वो चिंता, वो तनाव, वो अहंकार सब इसलिए हैं कि

0: क्योंकि हम मेरा मेरा की रट लगाए हुए हैं। आज कोशिश कीजिए मानसिक रूप से अपने सबसे प्रिय चीज या अपनी सबसे बड़ी चिंता उस ईश्वर को सौंप देने की। कह दीजिए कि हे प्रभु, यह तेरा है, तू ही संभाल। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपके कंधों से मानो भारी बोझ उतर गया हो। याद रखिए, जब तक आप पकड़ेंगे आप बंधे रहेंगे। जिस दिन आप सौंप देंगे आप उसी पल आज़ाद हो जाएंगे। जो उसका है उसे उसे ही रहने दीजिए और खुद इस खेल के साक्षी बन जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: ऐकून गेलाय रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे शुभंगी और आप सुन रहे हैं रेडियो का फेवरेट शो ओल्ड इज गोल्ड आरजे शुभंगी के साथ। आज हम किसी मामूली इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज़ की जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए और सभी मुस्कुरा भी दें। जी हाँ, द वन एंड ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था कि अगर वो पहाड़ को सलाम कर देते तो पहाड़ भी झुककर कहता, भाई साहब एक गाना और हो जाए।

तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गाने से जो आज भी हर शादी में दूल्हे की एंट्री पर बजता है, चाहे दूल्हा फूलों जैसा हो या चलिए छोड़िए। कहते हैं रफ़ी साहब ने इस गाने को इतनी शिद्दत से गाया कि म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को लगा कि स्टूडियो में सच में फूल गिर रहे हैं। चलिए सुनते हैं, सूरज फिल्म से बहारो फूल बरसाओ।

0: दोस्तों, अगला गाना उन लोगों के लिए है जो जिम नहीं जाते, बस ये गाना सुनकर ही अपनी कैलोरीज जो होती है वो बर्न कर लेते हैं। रफ़ी साहब थोड़े शर्मिले थे जब आरडी बर्मन ने ये हाई एनर्जी गाना उन्हें दिया, तो रफ़ी साहब ने पूछा, पंचम ये गाना है या मैराथन? पर जब गाया तो सच में वो रॉक स्टार बन गए। वो गाना है आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तीसरी मंजिल से, ये गाना सिर्फ आपके लिए।
1: आजा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। मैं हूं आपकी आरजे शुभांगी। ओल्ड इज गोल्ड में हम आज सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ बेहतरीन नगमे। तो लीजिए, अब पेश है वो गाना जिसे सुनकर यमराज भी अपनी डायरी बंद कर दे। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब का गला इतना छिल गया था कि उन्होंने 3 दिन तक बात तक नहीं की थी। घर वाले डर गए थे कि कहीं रफ़ी साहब मौन व्रत पर तो नहीं चले गए। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, ओ दुनिया के रखवाले, बैजू बावरा मूवी से।

दोस्तों, अगला गाना उन प्रेमियों के लिए जो सोचते हैं कि उनका प्यार सीक्रेट है, जबकि पूरी मोहल्ले की व्हाट्सएप कम्युनिटी को पता चल चुका होता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, ब्रह्मचारी फिल्म से ये गाना।

तो दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड कभी पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ और आपको जवाब ना सूझे, तो बस ये गाना गा देना, जान बच जाएगी। तो ये गाना है चौधरी का चांद हो, चौधरी का चांद फिल्म से ये गाना। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को उनका पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, ओल्ड इज गोल्ड आरजे शुभंगी के साथ। आजकल लोग चमकीले कपड़े पहनते हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने तो सितारों की साड़ी ही पहना दी थी। लीजिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना प्रिंस फिल्म से, बदन पे सितारे लपेटे हुए।

0: पीजिए सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: दोस्तों, अगला गाना जो है ये गाना ऑफिस जाने वालों के लिए नेशनल एंथम होना चाहिए। आप सोचेंगे भाई क्यों? क्योंकि जॉनी वॉकर के लिए गाते वक्त रफ़ी साहब खुद भी वैसे ही चेहरे बनाते थे जैसे जॉनी स्क्रीन पर बनाने वाले थे। तो ये गाना है डेडिकेटेड ऑफिस जाने वालों के लिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, पैसा फिल्म से ये गाना बहुत ही प्यारा सा सुनते हैं।
1: मालिश तेल मालिश चंपे।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग आर्य शुभांगी के साथ। हम किसी से कम नहीं, फिल्म से क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना उन लोगों के लिए जिन्होंने उधार लेकर वापस नहीं किया। भाई वादा तो किया था, लेकिन वादे का क्या हुआ? सुनते हैं बहुत ही बढ़िया सा गाना।

दोस्तों, जब मदन मोहन का संगीत और रफ़ी जी की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे मलाई में केसर मिल गया हो। अगला गाना सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म से तुम जो मिल गए है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ रफ़ी साहब।

दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड में अगला गाना सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर। झरोखे में बिठाया तो ठीक है, बस सिक्योरिटी गार्ड मत लगा देना।

दोस्तों, रफ़ी साहब इतने दरिया दिल थे कि कई बार नए संगीतकारों से सिर्फ 1 रुपया लेकर गाना गा देते थे। आज के दौर में 1 रुपये में क्या मिलता है, लेकिन रफ़ी साहब सच में जिंदा दिल इंसान थे, दरिया दिल इंसान थे। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, पर्दा है पर्दा, अमर अकबर एंथनी फिल्म से। कव्वाली का असली मज़ा रफ़ी साहब की आवाज़ सुन के तो पर्दे के पीछे वाले भी बाहर आ जाए शायद।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: दोस्तों, आज का ये ओल्ड इज गोल्ड एपिसोड, ये महफिल और ये समा सिर्फ और सिर्फ उस आवाज़ के नाम है जिसे सुनकर फरिश्ते भी रुक जाते हैं। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कई सितारे आए और गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी वो सूरज है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती। आज ओल्ड इज गोल्ड में हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, हम रफ़ी साहब की उस रूहानी दुनिया की सैर करेंगे जहाँ सादगी और सुरों का संगम था। तो क्या आप तैयार हैं इस सुरीले सफर के लिए? लीजिए सुनते हैं अगला गाना, बाबू समझो इशारे, चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गाना। ये गाना आज की ट्रैफिक पुलिस वालों को डेडिकेट करना चाहिए सच में।
1: बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, यहाँ चलती को गाड़ी

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: ए जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

दोस्तों, क्या आपको पता है उनका बचपन का नाम फीको, मतलब उनके घर वाले रफ़ी साहब को फीको बुलाते थे। अमृतसर के पास एक छोटे से गांव से उनका सफ़र शुरू हुआ और वो एक फ़कीर के पीछे पीछे गाना गाते हुए संगीत की दुनिया में आए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हम दोनों फिल्म से ये गाना, धुएं में छल्ला उड़ाना रफ़ी साहब ने ही सिखाया, लेकिन याद रहे, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं।

जब रफ़ी साहब ने 1948 में गांधी जी की शहादत के बाद सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की अमर कहानी गाया, तो इसे सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने रफ़ी साहब को अपने घर पर बुलाकर चांदी का मेडल भी दिया था। रफ़ी साहब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देते थे। वो ज़कात मतलब दान के पैकेट गुमनाम तरीके से बांटते थे ताकि लेने वालों को शर्मिंदगी ना हो। कई बार तो उन्होंने छोटे प्रोड्यूसर से सिर्फ 1 रुपये लेकर ही गाना गा दिया था। लीजिए सुनते हैं अगला गाना, तेरे घर के सामने मूवी से, दिल का भंवर करे पुकार।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, ओल्ड इज गोल्ड, आज शुभांगी के साथ। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली फिल्म से ये गाना, शम्मी कपूर की बॉडी लैंग्वेज और रफी साहब की आवाज। याहू की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया क्या? नहीं, सुनते हैं ये बेहतरीन गाना।

दोस्तों, पुराने जमाने में ना मोबाइल था, ना व्हाट्सअप, ना इंस्टा, ना फेसबुक, फिर भी अपनी फीलिंग्स यहाँ से वहाँ तक पहुँचाई जाती थी। वो कैसे? जी हाँ, उस जमाने में खत लिखे जाते थे। आज तो ब्लू टिक देखकर ही ब्रेकअप हो जाता है। तो सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना कन्यादान फिल्म से, लिखे जो खत तुझे।

तो दोस्तों फिर से एक बार जंगली फिल्म से बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं, जो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। जब रफ़ी साहब मुझको मेरे ही रंग में रंग दे गाते हैं, तो लगता है कि दुनिया में बस प्यार ही प्यार है, बाकी सब मोह माया है। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली फिल्म से।

दोस्तों इसके बाद सुनते हैं तीसरी मंजिल, ओ हसीना जुल्फों वाली, जुल्फे और हसीनाएं। रवि साहब की आवाज़ में जो खनक है वो किसी हीरे से कम नहीं।

0: अपनापन आपको।
1: हम जानते हैं कि उन्होंने हिंदी में गाया, लेकिन क्या आपको पता है कि रफ़ी साहब ने अंग्रेजी, डच, स्पेनिश और फारसी समेत 14 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में गाने गाए थे। जब किशोर कुमार के लिए गाया, वैसे तो दुनिया इन्हें कॉम्पिटिटर मानती थी, लेकिन हकीकत में दोनों पक्के दोस्त थे। रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए शरारत और रागिनी जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की थी। किसी की तारीफ करनी हो तो रफ़ी साहब से सीखे। रफ़ी साहब जिस अंदाज में तारीफ करते थे वो अंदाज ही अलग था। ससुराल फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी बस दो ही शब्दों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मैं और मेरा। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी कामयाबी, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा ओहदा। हम इन चीज़ों को इतनी मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं कि भूल जाते हैं कि हम खाली हाथ आए थे। अक्सर हमें लगता है कि जो कुछ हमने कमाया है उस पर हमारा पूरा हक है, लेकिन कबीर साहब आज उस हक की दीवार को एक ही झटके में गिरा देते हैं। वे एक ऐसा हिसाब पेश कर रहे हैं जिसमें घाटा होने के बाद भी इंसान को सबसे बड़ी जीत महसूस होती है। आज का दोहा उस बोझ को उतार देने के बारे में है जिसे हम बरसों से ढो रहे हैं। आइए जानते हैं सब कुछ सौंप देने का आनंद क्या होता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो

राम। यह दोहा कबीर साहब के समर्पण का शिखर है। यह उस मैं की पूरी तरह मिट जाने की घोषणा है जिसके बारे में हम पिछले कई एपिसोड से बात कर रहे हैं। जब इंसान मेरा मेरा कहना छोड़ देता है तब उसे जो मुक्ति मिलती है वो इस दोहे में है। श्रोताओं, कबीर साहब कितनी सरलता से कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं। वे अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि और अपनी फिर वे आगे कहते हैं तेरा तुझको सौंपता। जब मुझे यह समझ आ गई यह सब मेरा है ही नहीं तो उसके

0: ही आप यह मान लेते हैं कि सब कुछ उसका है, वैसे ही आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। फिर ना कुछ खोने का डर रहता है, ना कुछ पाने का लालच। आज का चिंतन, दोस्तों आज जरा अपने हाथों को खोल कर देखिए, हमने क्या क्या पकड़ रखा है। कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम अपना मान कर परेशान हो रहे हैं? वो चिंता, वो तनाव, वो अहंकार सब इसलिए हैं क्योंकि हम मेरा मेरा की रट लगाए हुए हैं। आज कोशिश कीजिए मानसिक रूप से अपने सबसे प्रिय चीज़ या अपनी सबसे बड़ी चिंता उस ईश्वर को सौंप देने की। कह दीजिए कि हे प्रभु, यह तेरा है, तू ही संभाल। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपके कंधों से मानो भारी बोझ उतर गया हो। याद रखिए, जब तक आप पकड़ेंगे आप बंधे रहेंगे। जिस दिन आप सौंप देंगे आप उसी पल आज़ाद हो जाएंगे। जो उसका है उसे उसे ही रहने दीजिए और खुद इस खेल के साक्षी बन जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।

बताए। आरजे शुभांगी के साथ आज हम किसी मामूली इंसान की बात नहीं कर रहे हैं जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए और सभी मुस्कुरा भी दें। जी हाँ, द वन एंड ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था कि अगर वो पहाड़ को सलाम कर देते तो पहाड़ भी झुककर कहता, भाई साहब एक गाना और हो जाए।

तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गाने से जो आज भी हर शादी में दूल्हे की एंट्री पर बजता है, चाहे दूल्हा फूलों जैसा हो या चलिए छोड़िए। कहते हैं रफ़ी साहब ने इस गाने को इतनी शिद्दत से गाया कि म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को लगा कि स्टूडियो में सच में फूल गिर रहे हैं। चलिए सुनते हैं सूरज फिल्म से बहारो फूल बरसाओ।

0: दोस्तों, अगला गाना उन लोगों के लिए है जो जिम नहीं जाते, बस ये गाना सुनकर ही अपनी कैलोरीज जो होती है वो बर्न कर लेते हैं। रफ़ी साहब थोड़े शर्मिले थे जब आरडी बर्मन ने ये हाई एनर्जी गाना उन्हें दिया, तो रफ़ी साहब ने पूछा, पंचम ये गाना है या मैराथन? पर जब गाया तो सच में वो रॉक स्टार बन गए। वो गाना है, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तीसरी मंजिल से ये गाना सिर्फ आपके लिए।
1: आजा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो वन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। मैं हूं आपकी आरजे शुभांगी। ओल्ड इज गोल्ड में हम आज सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ बेहतरीन नगमे। तो लीजिए, अब पेश है वो गाना जिसे सुनकर यमराज भी अपनी डायरी बंद कर दे। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब का गला इतना छिल गया था कि उन्होंने 3 दिन तक बात तक नहीं की थी। घर वाले डर गए थे कि कहीं रफ़ी साहब मौन व्रत पर तो नहीं चले गए। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, ओ दुनिया के रखवाले, बैजू बावरा मूवी से।

0: फ्रूट।
1: दोस्तों अगला गाना उन प्रेमियों के लिए जो सोचते हैं कि उनका प्यार सीक्रेट है, जबकि पूरी मोहल्ले की व्हाट्सएप कम्युनिटी को पता चल चुका होता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, ब्रह्मचारी फिल्म से ये गाना।

दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड कभी पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ और आपको जवाब ना सूझे, तो बस ये गाना गा देना, जान बच जाएगी। तो ये गाना है चौधरी का चांद हो, चौधरी का चांद फिल्म से ये गाना। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को उनका पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, ओल्ड इज गोल्ड आरजे शुभंगी के साथ। आजकल लोग चमकीले कपड़े पहनते हैं, लेकिन रफी साहब ने तो सितारों की साड़ी ही पहना दी थी। लीजिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना प्रिंस फिल्म से, बदन पे सितारे लपेटे हुए।

0: भेजा सरकार।
1: कहने था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: गाना ऑफिस जाने वालों के लिए नेशनल एंथम होना चाहिए। आप सोचेंगे भाई क्यों? क्योंकि जॉनी वॉकर के लिए गाते वक्त रफ़ी साहब खुद भी वैसे ही चेहरे बनाते थे जैसे जॉनी स्क्रीन पर बनाने वाले थे। तो ये गाना है डेडिकेटेड ऑफिस जाने वालों के लिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, पैसा फिल्म से ये गाना बहुत ही प्यारा सा सुनते हैं।
1: Malish, tell Malish, jump in.

है रेड 90 पॉइंट कम नहीं फिल्म से क्या हुआ तेरा वादा। ये गाना उन लोगों के लिए जिन्होंने उधार लेकर वापस नहीं किया। भाई वादा तो किया था लेकिन वादे का क्या हुआ सुनते हैं बहुत ही बढ़िया सा गाना।

जब और रफी ऐसा लगता है गया हो। अगला गाना से जख्म फिल्म गए है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ रफी साहब।

दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में अगला गाना सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर। झरोखे में बिठाया तो ठीक है, बस सिक्योरिटी गार्ड मत लगा देना।

दोस्तों, रफ़ी साहब इतने दरिया दिल थे कि कई बार नए संगीतकारों से सिर्फ 1 रुपया लेकर गाना गा देते थे। आज के दौर में 1 रुपये में क्या मिलता है, लेकिन रफ़ी साहब सच में जिंदा दिल इंसान थे, दरिया दिल इंसान थे। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, पर्दा है पर्दा, अमर अकबर एंथनी फिल्म से। कव्वाली का असली मज़ा, रफ़ी साहब की आवाज़ सुन के तो पर्दे के पीछे वाले भी बाहर आ जाए शायद।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: दोस्तों आज का ये ओल्ड इज गोल्ड एपिसोड, ये महफिल और ये समा सिर्फ और सिर्फ उस आवाज़ के नाम है जिसे सुनकर फरिश्ते भी रुक जाते हैं। दोस्तों संगीत की दुनिया में कई सितारे आए और गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी वो सूरज है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती। आज ओल्ड इज गोल्ड में हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, हम रफ़ी साहब की उस रूहानी दुनिया की सैर करेंगे जहाँ सादगी और सुरों का संगम था। तो क्या आप तैयार हैं इस सुरीले सफर के लिए? लीजिए सुनते हैं अगला गाना, बाबू समझो इशारे, चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गाना। ये गाना आज की ट्रैफिक पुलिस वालों को डेडिकेट करना चाहिए सच में।
1: बाजू

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

दोस्तों, क्या आपको पता है उनका बचपन का नाम फीको, मतलब उनके घर वाले रफ़ी साहब को फीको बुलाते थे। अमृतसर के पास एक छोटे से गांव से उनका सफ़र शुरू हुआ और वो एक फ़कीर के पीछे पीछे गाना गाते हुए संगीत की दुनिया में आए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हम दोनों फिल्म से ये गाना, धुएं में छल्ला उड़ाना रफ़ी साहब ने ही सिखाया, लेकिन याद रहे, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं।

जब रफ़ी साहब ने 1948 में गांधी जी की शहादत के बाद सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की अमर कहानी गाया, तो इसे सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने रफ़ी साहब को अपने घर पर बुलाकर चांदी का मेडल भी दिया था। रफ़ी साहब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देते थे। वो ज़कात मतलब दान के पैकेट गुमनाम तरीके से बांटते थे ताकि लेने वालों को शर्मिंदगी ना हो। कई बार तो उन्होंने छोटे प्रोड्यूसर से सिर्फ 1 रुपये लेकर ही गाना गा दिया था। लीजिए सुनते हैं अगला गाना, तेरे घर के सामने मूवी से, दिल का भंवर करे पुकार।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, ओल्ड इज गोल्ड, आज शुभांगी के साथ। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जंगली फिल्म से यह गाना शम्मी कपूर की बॉडी लैंग्वेज और रफी साहब की आवाज। याहू की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया क्या? नहीं, सुनते हैं ये बेहतरीन गाना।

दोस्तों, पुराने ज़माने में ना मोबाइल था, ना व्हाट्सअप, ना इंस्टा, ना फेसबुक, फिर भी अपनी फीलिंग्स यहाँ से वहाँ तक पहुँचाई जाती थी। वो कैसे? जी हाँ, उस ज़माने में खत लिखे जाते थे। आज तो ब्लू टिक देखकर ही ब्रेकअप हो जाता है। तो सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना कन्यादान फिल्म से, लिखे जो खत तुझे।

तो दोस्तों फिर से एक बार जंगली फिल्म से बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं, जो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। जब रफ़ी साहब मुझको मेरे ही रंग में रंग दे गाते हैं, तो लगता है कि दुनिया में बस प्यार ही प्यार है, बाकी सब मोह माया है। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली फिल्म से।

दोस्तों इसके बाद सुनते हैं तीसरी मंजिल, ओ हसीना जुल्फों वाली, जुल्फे और हसीनाएं। रफ़ी साहब की आवाज़ में जो खनक है वो किसी हीरे से कम नहीं।

0: अपन आपको।
1: हम जानते हैं कि उन्होंने हिंदी में गाया, लेकिन क्या आपको पता है कि रफ़ी साहब ने अंग्रेजी, डच, स्पेनिश और फारसी समेत 14 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में गाने गाए थे। जब किशोर कुमार के लिए गाया, वैसे तो दुनिया इन्हें कॉम्पिटिटर मानती थी, लेकिन हकीकत में दोनों पक्के दोस्त थे। रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए शरारत और रागिनी जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की थी। किसी की तारीफ़ करनी हो तो रफ़ी साहब से सीखे। रफ़ी साहब जिस अंदाज में तारीफ़ करते थे वो अंदाज ही अलग था। ससुराल फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM ओल्ड इज गोल्ड आर्य शुभांगी के साथ। दोस्तों कई बार मैं सोचती हूँ जब ये गाना सुनती हूँ कि आंखें गुलाबी कैसे हो सकती है। हो सकती है क्या? जी हाँ ज़रूर हो सकती है। जब रफ़ी साहब गाना गाएं तो कुछ भी हो सकता है। शायद नींद पूरी नहीं होगी या फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में जो नशा है वो ज़रूर उस पे चढ़ा है, इसलिए आंखें गुलाबी हो सकती है। द ट्रेन फिल्म से गुलाबी आंखें।

तो दोस्तों अब सुनते हैं कर्ज फिल्म से दर्द ए दिल दर्द ए जिगर। ऋषि कपूर और रफ़ी साहब की जोड़ी ने ऐसा जादू किया कि आज भी डीजे पर ये गाना जब बजता है तो लोग नाचने लगते हैं।

दोस्तों, अभी सुनते हैं एक ऐसा गाना जिस गाने को गाते वक्त खुद रफ़ी साहब फूट फूट कर रोए थे, क्योंकि उनकी अपनी बेटी की विदाई का वक्त करीब था और ये गाना उन्होंने रिकॉर्ड तभी किया था। बाबुल की दुआएं लेती जा, नीलकमल फिल्म से ये गाना।

दोस्तों, शम्मी कपूर साहब के स्टाइल को अगर किसी ने आवाज दी तो वो रफी साहब थे। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त शम्मी जी स्टूडियो के बाहर खड़े होकर रफी साहब को एक्शन करके दिखा रहे थे ताकि रफी साहब वही शरारत अपनी आवाज में ला सके। ये गाना था तुमसा नहीं देखा, तुमसा नहीं देखा मूवी से ये गाना, सुनते हैं।

दोस्तों, रफ़ी साहब ने कहा था कि आवाज़ कभी नहीं मरती और उनकी आवाज़ तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में बसी है। मैं हूँ आरजे शुभांगी। रेडियो पर प्यार बांटते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर ज़िले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम फीको था। रफ़ी साहब के गायकी के सफ़र की शुरुआत एक फ़कीर का पीछा करते हुए हुई थी। वो फ़कीर गलियों में गाते हुए निकलता था और नन्हे रफ़ी उनकी नकल किया करते थे। फिर से एक बार बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं, दुलारी फिल्म से सुहानी रात ढल चुकी।

0: कि ना जाने तुम कब आओगे।
1: दोस्तों, जब हम रफ़ी साहब के खासियत के बारे में बात करते हैं तो रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जिस अभिनेता, जैसे कि दिलीप कुमार हो, शम्मी कपूर, जॉनी वॉकर या ऋषि कपूर या और कोई, तो इन अभिनेताओं के लिए जब वो गाते थे अपनी आवाज़ उसी के चेहरे और हाव भाव के अनुसार ढाल लेते थे। यही खूबी उनमें थी। शम्मी कपूर साहब कहते थे, रफ़ी साहब ने मुझे मेरी आवाज़ दी। याहू जैसा गाना रफ़ी साहब की ऊर्जा के बिना अधूरा होता। लीजिए सुनते हैं अगला गाना मेरे सनम फिल्म से, पुकारता चला हूँ मैं।

तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब भारतीय संगीत जगत का वो अनमोल रत्न है जिनकी आवाज़ को खुदा की आवाज़ कहा जाता है। रफ़ी साहब ने मराठी में भी कुछ बेहद खूबसूरत गाने और अभंग गाए हैं जो महाराष्ट्र के घरों में आज भी गूंजते हैं, जैसे कि हा छंद जीवाला लावी पिसे।

दोस्तों, पंचमदा के साथ उन्होंने तीसरी मंजिल में रॉक एंड रोल का वो जादू बिखेरा कि पूरी दुनिया झूम उठी। रफी साहब एक ऐसे फरिश्ते थे जो दुनिया को सुरों की विरासत देने आए थे। वो अक्सर कहते थे कि मैं तो सिर्फ गाता हूँ, सुर तो ऊपर वाला लगाता है। 31 जुलाई 1980 को जब उनका निधन हुआ तब मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। कहा जाता है कि उस दिन सिर्फ उनके चाहने वाले ही नहीं बल्कि आसमान भी रो रहा था। उनके जनाजे में हजारों की भीड़ थी जो किसी बादशाह की विदाई से कम नहीं थी।

लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने दिल को संभालिए, क्योंकि अपोलो सर्कस का टार्जन वो करके दिखाएगा जो आज तक संत साधु कर दिखाया करते थे। वहां ऊपर टार्जन है। और यहां इन नोकदार कीलों का ये फर्श, टार्जन वहां से सीधा इन कीलों के भीड़ में कूदेगा।

दोस्तों, ऊपर टार्जन और नीचे ये आग का दरिया। लेट्स सी लेडीज एंड जेंटलमैन, टार्जन इस आग के दरिया को पार कर सकता है या इन आग के शोलों में समा जाता है। टार्जन।